0: ये खबरें एनएचके वर्ल्ड जापान की उर्दू सर्विस से नशर की जा रही हैं। और अब कुछ मजीद खबरें। तेल पैदा करने वाले ममालिक के ओपेक प्लस ग्रुप के साथ अरकान ने ऐलान किया है कि वो जून में योमिया पैदावार के कोटे में 1,80,000 बैरल से ज़्यादा इजाफा करेंगे। ये फैसला ग्रुप से मुत्तहिदा अरब अमारात के निकलने के बाद किया गया है। सऊदी अरब और रूस समेत ममालिक ने इतवार को एक ऑनलाइन इजलास के बाद ये बयान जारी किया। उनका कहना है कि वो पैदावारी कोटे में 1,88,000 बैरल योमिया इजाफा करेंगे। मुत्तहिदा अरब अमारात ने कहा है कि वो पेट्रोलियम बरामद करने वाले ममालिक की तंजीम ओपेक के साथ साथ ओपेक प्लस को भी जुमे के रोज छोड़ देगा। उसने इतवार के इजलास में शिरकत नहीं की। ग्रुप ने मई के लिए योमिया 2,06,000 बैरल का इजाफा मुकरर किया है। सातों मुल्कों ने कहा कि वो मंडी की सूरत हाल की करीबी निगरानी और जायजा जारी रखेंगे। जापानी वजीर खारजा मोतेगी तोशीमित्सु ने अपने ईरानी हम मनसब से इस मुतालबे का इरादा किया है कि खलीज फारिस में मौजूद बैरी जहाज जल्द अज जल्द बाहिफाजत आबनाए हुरमस से गुजर सके। मशरकी अफ्रीकी मुल्क कीनिया के दौरे के दौरान जनाब मोतेगी ने जापान के मयारी वक्त के मुताबिक इतवार को अलसुबह ईरानी वजीर खारजा अब्बास इराकची से टेलीफोन पर बात की। ईरान की दरख्वास्त पर होने वाले ये मुजाकरात तकरीबन 20 मिनट तक जारी रहे। जनाब इराकची ने मोतेगी को अपने मुल्क के अमरीका के साथ तनाज़े के हवाले से मौजूदा सूरत हाल के बारे में वजाहत दी, जिसमें वाशिंगटन के साथ तजावीज़ के हालिया तबादले भी शामिल हैं। जनाब मोतेगी ने इसके बाद जापान की जानिब से इस उम्मीद का इजहार किया कि जंग बंदी बरकरार रहेगी और ये कि अमरीका के साथ ईरान के मुजाकरात जल्द बहाल होंगे, जो हतमी मुहिदे की तरफ ले जाएंगे। उन्होंने ईरान से ज़्यादा लचक दिखाने का भी मुतालबा किया। मोतेगी ने मज़ीद कहा कि जापान इस बात को यकीनी बनाने को अहमियत देता है कि तमाम ममालिक के जहाज आबनाए हुरमस से आज़ादाना और महफूज तरीके से गुजर सकें। रवायती जापानी बुल फाइटिंग में बैलों को सींग लड़ाते हुए देखने के लिए तमाशाई इतवार को नीगाता प्रीफेक्चर के एक शहर में जमा हुए। इस इवेंट को एक अहम गैर मरई लोक सकाफती वर्सा नामजद किया गया है। वस्ती जापान में ओजिया और नागाओका शहरों में हर साल इसके सीजन के दौरान कई मैच होते हैं। ओजिया शहर ने इतवार को इस साल का पहला इवेंट मुनक्किद किया, जिसमें 36 बैल शामिल थे। मुकाबले में दो बैल आमने सामने होते हैं, वो मालकान की हौसला अफजाई के साथ सींग फंसाकर एक दूसरे को धकेलते हैं। बैलों को चोट लगने से बचाने के लिए हर मुकाबला बराबर खत्म किया गया। तकरीबन 1,000 तमाशबीन इवेंट देखने आए। 80 के पेटे के एक शख्स ने कहा कि उसने पहली बार देखा है और वो वाकई लड़ाई के ताकतवर असरात को महसूस कर सकता है। शहर नवंबर तक हर माह एक टूर्नामेंट का इनेकाद करेगा।
1: अब आज की चंद अहम खबरों की शह सुर्खियां। जापान और ऑस्ट्रेलिया के रहनुमाओं ने एक मुश्तरका ऐलामिया जारी किया है, जिसमें इक्तसादी सलामती में ताउन का खाका पेश किया गया है। रहनुमा खतूत तवानाई, अहम मादनियात, खुराक और दीगर कलीदी वसाइल के लिए फ्राहमी का तसलसल यकीनी बनाने पर मरकूज हैं। जापानी वज़ीर आज़म ताकाइची सानाई ने पीर को अपने ऑस्ट्रेलवी हम मनसब एंथोनी अल्बानीस के साथ बातचीत की। ये सरबराह कॉन्फ्रेंस ऑस्ट्रेलिया के दार हुकूमत कैनबरा में हुई और तकरीबन 90 मिनट तक जारी रही। उधर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने आबनाए हुरमस से बहरी जहाज निकालने की तजवीज़ पेश की है, जिसे वो इंसान दोस्त अमल कह रहे हैं। और ओपेक प्लस के साथ अरकान ने ग्रुप से मुत्तहिदा अरब अमारात की अलहदगी के बाद पैदावार बढ़ाने का ऐलान किया है। एनएचके वर्ल्ड जापान की उर्दू सर्विस से खबरें ख़त्म हुईं। मज़ीद खबरों और वीडियोस के लिए हमारी वेबसाइट है nhk.jp/urdu।

ये NHK World Japan की हिंदी रेडियो सेवा है। ये प्रसारण शॉर्टवेव 11,655 किलोहर्ट्ज पर दक्षिण पश्चिम एशिया क्षेत्र के लिए है। समय हुआ है UTC अपराह्न 3:30 बजे यानी भारतीय समयानुसार रात 9 बजे। हमारी प्रसारण सूची और ताज़ा समाचारों के लिए देखें हमारी वेबसाइट nhk.jp/hindi।

ताकाइची ने वार्ता की शुरुआत में कहा कि अंतर्राष्ट्रीय माहौल जटिल और गंभीर होता जा रहा है। उन्होंने कहा कि इसी कारण से वे कई वर्षों से समान विचारधारा वाले देशों के बीच सहयोग के महत्व पर जोर देती आई हैं। नेताओं ने पश्चिम एशिया की मौजूदा स्थिति को ध्यान में रखते हुए स्थिर द्विपक्षीय ऊर्जा आपूर्ति सुनिश्चित करने के प्रयास आगे बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की। ताकाइची और अल्बानीज इस बात पर सहमत हुए कि अल्बानीज की जापान यात्रा से पहले दोनों देशों के मंत्रीगण व्यापक सुरक्षा सहयोग को और बढ़ाने तथा संस्थागत रूप देने के ठोस तरीकों का पता लगाएंगे। दोनों नेता जापानी आत्मरक्षा बल और ऑस्ट्रेलियाई सेना के बीच सहयोग मजबूत करने के प्रयासों पर भी सहमत हुए। नेताओं ने पुष्टि की कि उनके देश साइबर के क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए सामरिक साझेदारी करेंगे। उन्होंने पश्चिम एशिया, चीन और उत्तर कोरिया सहित क्षेत्रीय मुद्दों पर भी विचार विमर्श किया। उन्होंने होर्मुज जलडमरू मध्य से निर्बाध व सुरक्षित नौवहन सुनिश्चित करने के महत्व की पुष्टि की और वे तनाव कम करने के लिए निकट संपर्क में रहने पर भी राजी हुए। जापान और इंडोनेशिया के रक्षा मंत्रियों ने रक्षा उपकरणों और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए एक कार्यकारी दल गठित करने पर सहमति व्यक्त की है। जापान ने विदेशों को रक्षा उपकरण देने पर लगे प्रतिबंधों में ढील दी है, जिसके बाद ये सहमति हुई है। जापान के रक्षा मंत्री कोइजुमी शिंजिरो और उनके इंडोनेशियाई समकक्ष शफरी शमसुद्दीन ने सोमवार को जकार्ता में मुलाकात की। शमसुद्दीन ने जापानी नीति में किए गए इस बदलाव का स्वागत किया। पिछले महीने जापान ने विदेशों को रक्षा उपकरण देने से संबंधित अपने तीन सिद्धांतों और उनके परिपालन दिशा निर्देशों में संशोधन किया था। विदेशों को रक्षा उपकरण हस्तांतरित करने के नियम बचाव और परिवहन जैसी पांच श्रेणियों तक सीमित थे, जिन्हें अब समाप्त कर दिया गया है। इस बदलाव से जापान को सैद्धांतिक रूप से सुरक्षा पोतों और मिसाइलों जैसे घातक हथियारों के स्थानांतरण की अनुमति मिल गई है। रक्षा प्रमुखों ने और अधिक समन्वय के प्रयास में मंत्री, उपमंत्री और रक्षा बल प्रमुख जैसे तीन स्तरों की आपसी संवाद व्यवस्था स्थापित करने की भी पुष्टि की। जापान और इंडोनेशिया के रक्षा मंत्रियों ने जानकारी की सुरक्षा के तरीकों पर चर्चा को आगे बढ़ाने पर भी सहमति व्यक्त की। बाद में उन्होंने एक दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए, जिसमें कहा गया है कि दोनों पक्ष समुद्री सुरक्षा, आपदा संबंधी राहत उपायों और रक्षा प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाएंगे।

ये समाचार एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा से प्रसारित किए जा रहे हैं। जापान की वित्त मंत्री कातायामा सात्सुकी ने मौजूदा पश्चिम एशिया संकट के बीच आर्थिक कठिनाइयों का सामना कर रहे विकासशील देशों की सहायता के लिए एशियाई विकास बैंक यानी एडीबी के साथ सहयोग करने का संकल्प लिया है। कातायामा सोमवार को मध्य एशियाई देश उज्बेकिस्तान में एडीबी की मंडल बैठक में शामिल हुई। इस क्षेत्र में इस बात को लेकर चिंता है कि ये संकट ऊर्जा, खाद्य सुरक्षा और अर्थव्यवस्थाओं को किस प्रकार प्रभावित करेगा। कातायामा ने कहा कि वैश्विक अनिश्चितता पूरे एशिया प्रशांत क्षेत्र के लिए एक गंभीर मुद्दा है। उन्होंने कहा कि जापान एडीबी के साथ मिलकर छोटी और मझौली कंपनियों को ईंधन की कमी से निपटने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करेगा और ऊर्जा परिवर्तन को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न देशों को निवेश और ऋण भी उपलब्ध करवाएगा। बैठक के बाद कातायामा ने कहा कि आपूर्ति श्रृंखलाएं एशिया तक फैली हुई हैं, इसलिए इस क्षेत्र की मदद करना जापान के लिए काफी फायदेमंद है। जापान के आत्मरक्षा बल यानी JSDF के कर्मियों ने फिलीपींस अमेरिका सैन्य अभ्यास के तहत गोलाबारी अभ्यास किया है। बालिकातान अभ्यास फिलीपींस में 20 अप्रैल को शुरू हुआ था। JSDF ने इसमें भाग लेने के लिए लगभग 1,400 कर्मी भेजे हैं। सोमवार के अभ्यास में उत्तरी फिलीपींस के इलोकोस नॉर्ते प्रांत के तट पर आक्रमण को रोकने का प्रशिक्षण भी किया गया। यह क्षेत्र दक्षिण चीन सागर की ओर

0: किए हुए हैं। अमरीकी सैनिकों ने हाईमार्स नामक प्रणालियों से समुद्र में रॉकेट दागे। उन्होंने ड्रोन विमानों को भेदने के लिए सतह से हवा में मार करने में सक्षम पोर्टेबल मिसाइल प्रणाली का भी उपयोग किया। जापान के थल आत्मरक्षा बल की उभयचर त्वरित तैनाती ब्रिगेड के लगभग 40 कर्मियों ने रिकॉयललेस बंदूकों से गोलीबारी की। इस ब्रिगेड का मुख्यालय नागासाकी में है। जापान और फिलीपींस के बीच पिछले साल लागू हुए सुरक्षा सहयोग समझौते के बाद ये अभ्यास किया जा रहा है। ये समझौता संयुक्त अभ्यास की प्रक्रियाओं को सरल बनाता है। जापान सरकार के आंकड़ों के अनुसार देश में बाल जनसंख्या घटकर 1,33,00,000 हो गई है। लगातार 45वें वर्ष इस आंकड़े में गिरावट दर्ज की गई है। आंतरिक मामलों के मंत्रालय का अनुमान है कि 1 अप्रैल तक 14 वर्ष या इससे कम आयु के बच्चों की संख्या 1,32,90,000 थी, जो 1 वर्ष पहले की तुलना में 3,50,000 कम है। कुल बाल जनसंख्या में लड़कों की संख्या 68,10,000 है, जबकि लड़कियों की संख्या 64,80,000 है। आबादी को आयु वर्ग के अनुसार विभाजित करने पर आयु वर्ग कम होने पर संख्या कम होती जाती है। उदाहरण के लिए 12 से 14 वर्ष की आयु के 30,90,000 बच्चे हैं, लेकिन 0 से 2 वर्ष के आयु वर्ग के केवल 21,30,000 बच्चे हैं। देश की कुल जनसंख्या में बच्चे अब 10.8% हैं, जो पिछले वर्ष की तुलना में 0.3 अंक कम है। ये प्रतिशत लगातार 52 साल से घट रहा है। संयुक्त राष्ट्र विश्व जनसंख्या पूर्वानुमान के अनुसार 1 जुलाई 2025 तक 4 करोड़ से अधिक की आबादी वाले देशों में ये आंकड़ा दक्षिण कोरिया के 10.2% के बाद दूसरा सबसे कम है।
1: इसके साथ ही एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा से समाचारों का ये अंक समाप्त होता है।
2: ये है एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा। भारत में हमारे प्रसारण का आनंद आप ले सकते हैं रात 9 बजे से शॉर्टवेव 11,655 किलोहर्ट्ज पर। हमारा सजीव प्रसारण nhk.jp/hindi पर भी सुना जा सकता है। सुनते रहें NHK वर्ल्ड जापान।

0: एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा के भाषा शिक्षण कार्यक्रम बोलचाल की जापानी में आपका स्वागत है। मैं हूं चिन्मय दीक्षित।
1: और मैं हूं सुमिता भट्टाचार्य जी। तो आइए मजे से सीखें जापानी भाषा।
0: आज दसवें पाठ में सीखेंगे दाम पूछना।
1: वियतनाम से जापान आई विदेशी छात्रा ताम हारूसान हाउस में रहती है। वो अपनी सहेली आयाका के साथ विद्युत उपकरणों की दुकान में आई है। ताम बाल सुखाने का ड्रायर खरीदना चाहती है।
0: तो आइए सुनते हैं दसवें पाठ की बातचीत।
2: すごいでしょ。これはサラサラヘア。これはツヤが出るタイプ。へえ、いくらですか？セールって書いてある。聞いてみよう。すみません。このドライヤーはいくらですか？
3: 9900円 です。
2: 高すぎます。
1: अब इस बातचीत को फिर से हर वाक्य के अर्थ के साथ सुनते हैं।
0: दुकान में तरह तरह के ड्रायर देखकर ताम सोच में पड़ गई। उसने कहा,
2: たくさんありますね।
1: बहुत सारे हैं।
0: तब आयाका बोली,
2: すごいでしょ।
1: बढ़िया है ना?
0: फिर आयाका ताम को तरह तरह के ड्रायर दिखाने लगी।
2: これはサラサラヘア।
1: ये बालों को रेशमी बनाता है।
2: これはツヤが出るタイプ।
1: इससे बालों में चमक आती है।
0: उसके बाद ताम ने पूछा,
2: いくらですか?
1: अच्छा, कितने का है?
0: आयाका ने ड्रायर पर लगी पर्ची देखी, लेकिन उस पर लाल रंग से केवल सेल लिखा हुआ था। उसने कहा,
1: सेल लिखा हुआ है। पूछते हैं।
0: ताम ने दुकानदार को आवाज लगाई,
1: माफ कीजिए, ये ड्रायर कितने का है?
0: दुकानदार ने बताया,
3: 9900円 です।
0: 9900円 का।
1: ये सुनकर ताम हैरान होकर बोली,
2: え、高すぎます।
1: ओह, बहुत महंगा है।
0: ताम ने ड्रायर के दाम तो पूछ लिए, लेकिन वो उसके लिए बहुत महंगा था।
1: आज का मुख्य वाक्य है,
2: このドライヤーはいくらですか?
1: यानी ये ड्रायर कितने का है? ये वाक्य याद करके आप खरीदारी करते समय दाम पूछ सकेंगे।
0: इस वाक्य में
4: कोनो
0: का अर्थ है ये,
4: ड्रायर
0: का मतलब है बाल सुखाने का ड्रायर,
4: वा
0: वाक्य का विषय बताने वाला कारक है, और
4: इकुरा
0: का अर्थ है कितने का।
1: आज के पाठ में ध्यान देने वाली बात ये है कि किसी चीज का दाम पूछते समय जापानी में कहते हैं
4: इकुरा देसु का,
1: यानी कितने का है। तो आपको बस उस चीज की तरफ इशारा करना है जिसका नाम आप पूछना चाहते हैं और कहना है इकुरा देसु का।
0: इसके अलावा आप पिछले पाठों में सीखे संकेतवाचक सर्वनामों का भी उपयोग कर सकते हैं। आपको याद होगा संकेतवाचक सर्वनाम है
4: कोरे, सोरे, अरे,
0: यानी ये, वो या वो दूर। जैसे आपका वाक्य हो सकता है
4: कोरे वा इकुरा देसु का,
0: यानी ये कितने का है।
1: अगर आपको उस चीज का नाम पता हो तो आप
4: कोरे, सोरे, अरे
1: की जगह कह सकते हैं
4: कोनो, सोनो, अनो
1: और उसके बाद उस चीज का नाम। जैसे ड्रायर का दाम पूछना हो तो वाक्य बनेगा कोनो दोराइया वा इकुरा देसु का, यानी ये ड्रायर कितने का है।
0: तो अब आप भी उच्चारण का अभ्यास कर लीजिए, सुनिए और दोहराइए।
4: このドライヤーはいくらですか?
1: अब एक और छोटी सी बातचीत सुनते हैं जिसमें ग्राहक दुकानदार से किसी चीज का दाम पूछ रहा है।
5: すみません。この炊飯器はいくらですか?
3: 8700円です。
0: और अब समझ लेते हैं इसका अर्थ। पहले महिला ने पूछा,
5: すみません,
1: माफ कीजिए,
5: कोनो सुईहान की वा इकुरा देसु का,
1: ये राइस कुकर कितने का है।
0: इस वाक्य में
4: सुईहान की
0: का अर्थ है राइस कुकर।
1: जवाब में दुकानदार ने कहा,
3: 8700 円です。
0: 8700円か。
6: 円
1: का मतलब है जापान की मुद्रा येन।
0: तो फिर से सुनिए और बोलने का अभ्यास कीजिए।
4: すみません。この炊飯器はいくらですか？
1: अब वाक्य बनाकर देखिए। मान लीजिए आप किसी दुकान में ऊंची शेल्फ पर रखे ईयरफोन का दाम पूछना चाहते हैं। चीज आपसे और दुकानदार से दूर रखी है, इसलिए उसके नाम से पहले लगाएंगे
4: अनो,
1: और ईयरफोन का जापानी उच्चारण है
4: इयाहोन।
1: तो वाक्य बनाने की कोशिश कीजिए।
2: すみません、あのイヤホンはいくらですか？
0: अब सीख लेते हैं कुछ संबंधित शब्द। आज की बातचीत में दुकानदार ने ड्रायर का दाम बताया। इससे पहले हम 10 तक की गिनती सीख चुके हैं, आज कुछ बड़ी संख्याएं सीखते हैं।
1: पहले दो अंकों की संख्याओं की बात करते हैं। 20 से लेकर 90 तक के 10 के गुणकों को जापानी भाषा में बोलने के लिए 2 से 9 तक की संख्याओं के साथ
4: जी
1: यानी 10 जोड़ते हैं।
0: अगर 20 कहना है तो उसके पहले बोलेंगे नी यानी दो, और उसके बाद जू यानी 10, तो बन जाएगा नी जू।
1: तो जापानी भाषा में 10 से लेकर 90 तक 10 के गुणक हैं
4: जू, निजू, सांजू, योंजू, गोजू, रुकुजू, ननाजू, हचीजू, क्यूजू।
0: अब बात करते हैं 3 अंकों की संख्याओं की। 100 को जापानी में कहते हैं
4: 100।
0: 100 के गुणक बनाने के लिए भी
4: 100
0: से पहले 2 से 9 की संख्याएं जोड़ी जाती हैं।
1: इसलिए जापानी में 200 बोलने के लिए नी के बाद 100 जोड़कर बनेगा नी 100।
0: लेकिन कुछ संख्याओं के साथ उच्चारण बदल जाता है, जैसे 300 है
4: 300,
0: 600 है
4: 600
0: और 800 है
4: 800।
1: अब 1000 की गिनती सीखते हैं। 1000 को कहते हैं
4: सेन,
1: और उसके गुणक बनाने के लिए भी सेन से पहले 2 से 9 तक के अंक लगाए जाते हैं।
0: यहाँ भी कुछ संख्याओं का उच्चारण बदलता है। 3000 को कहते हैं
4: सानजेंग
0: और 8000 को कहते हैं
4: हसेंग।
1: बड़ी संख्याएं बोलने के लिए बड़े अंक से छोटे अंक को क्रम में बोलते हैं, जैसे 1234 को जापानी भाषा में कहेंगे
4: सेन निहाकु सांजु योंग।
0: तो अब आज की बातचीत एक बार फिर सुन लेते हैं।
2: तकसान अरिमास ने सुगोई देशो कोरे वा सरासरा हेया कोरे वा त्सुया गा देरु टाइप हे इकुरा देसु का सेलु त्ते काइते अरु聞いてみよう。すみません、このドライヤーはいくらですか？
3: 9900円です。
2: え、高すぎます。
7: ハルさんの知恵袋。
0: अब बारी है हारू जी की सलाह की। आज हम बताएंगे जापान के नोट और सिक्कों के बारे में।
1: जापान में 4 तरह के नोट हैं, 1000 येन, 2000 येन, 5000 येन और 10000 येन के।
0: जापान के लोग नए नोट पसंद करते हैं। शादी या अन्य खुशी के अवसरों पर उपहार में पैसे देते समय नए नोट देना उचित माना जाता है। उपहार में पैसे देने के लिए यहाँ खास लिफाफे मिलते हैं, लोग उनमें नए नोट डालकर भेंट करते हैं।
1: इसके अलावा जापान में 6 तरह के सिक्के हैं, 1 येन, 5 येन, 10 येन, 50 येन, 100 येन और 500 येन के। वेंडिंग मशीनों में 1 और 5 येन के सिक्के नहीं चलते, उनका इस्तेमाल दुकान से खरीदारी करते समय ही हो सकता है। दोस्तों, आशा है बोलचाल की जापानी का आज का पाठ आपको पसंद आया होगा।
0: अगले पाठ में ताम असाकुसा जाएंगी, तब तक के लिए
1: सायोनारा।

ये एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी रेडियो सेवा है। ये प्रसारण शॉर्टवेव 11,655 किलोहर्ट्ज पर दक्षिण पश्चिम एशिया क्षेत्र के लिए है। समय हुआ है यूटीसी अपराह्न 3:30 बजे यानी भारतीय समयानुसार रात 9 बजे। हमारी प्रसारण सूची और ताजा समाचारों के लिए देखें हमारी वेबसाइट nhk.jp/hindi।

टोक्यो से एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा में आपका स्वागत है। जापान के समयानुसार 5 मई मंगलवार रात 11:30 बजे गुरजिंदर सग्गू और वायला खवानो से सुने समाचार। जापान और ऑस्ट्रेलिया के नेताओं ने आर्थिक सुरक्षा सहयोग की रूपरेखा प्रस्तुत करता एक संयुक्त घोषणा पत्र जारी किया है। इन दिशा निर्देशों में ऊर्जा, अहम खनिजों, खाद्य पदार्थों और अन्य प्रमुख संसाधनों की आपूर्ति श्रृंखलाएं सुदृढ़ करने पर ध्यान दिया गया है। जापान की प्रधानमंत्री ताकायची सानाए ने सोमवार को ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री एंथनी अल्बानीज के साथ ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबेरा में वार्ता की।

मध्य से निर्बाध व सुरक्षित नौवहन सुनिश्चित करने के महत्व की पुष्टि की और वे तनाव कम करने के लिए निकट संपर्क में रहने पर भी राजी हुए। जापान और इंडोनेशिया के रक्षा मंत्रियों ने रक्षा उपकरणों और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए एक कार्यकारी दल गठित करने पर सहमति व्यक्त की है। जापान ने विदेशों को रक्षा उपकरण देने पर लगे प्रतिबंधों में ढील दी है, जिसके बाद ये सहमति हुई है। जापान के रक्षा मंत्री कोइजुमी शिंजिरो और उनके इंडोनेशियाई समकक्ष शफरी शमसुद्दीन ने सोमवार को जकार्ता में मुलाकात की। शमसुद्दीन ने जापानी नीति में किए गए इस बदलाव का स्वागत किया। पिछले महीने जापान ने विदेशों को रक्षा उपकरण देने से संबंधित अपने तीन सिद्धांतों और उनके परिपालन दिशा निर्देशों में संशोधन किया था। विदेशों को रक्षा उपकरण हस्तांतरित करने के नियम बचाव और परिवहन जैसी पांच श्रेणियों तक सीमित थे, जिन्हें अब समाप्त कर दिया गया है। इस बदलाव से जापान को सैद्धांतिक रूप से सुरक्षा पोतों और मिसाइलों जैसे घातक हथियारों के स्थानांतरण की अनुमति मिल गई है। रक्षा प्रमुखों ने और अधिक समन्वय के प्रयास में मंत्री, उपमंत्री और रक्षा बल प्रमुख जैसे तीन स्तरों की आपसी संवाद व्यवस्था स्थापित करने की भी पुष्टि की। जापान और इंडोनेशिया के रक्षा मंत्रियों ने जानकारी की सुरक्षा के तरीकों पर चर्चा को आगे बढ़ाने पर भी सहमति व्यक्त की। बाद में उन्होंने एक दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए, जिसमें कहा गया है कि दोनों पक्ष समुद्री सुरक्षा, आपदा संबंधी राहत उपायों और रक्षा प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाएंगे।

ये समाचार एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा से प्रसारित किए जा रहे हैं। जापान की वित्त मंत्री कातायामा सात्सुकी ने मौजूदा पश्चिम एशिया संकट के बीच आर्थिक कठिनाइयों का सामना कर रहे विकासशील देशों की सहायता के लिए एशियाई विकास बैंक यानी एडीबी के साथ सहयोग करने का संकल्प लिया है। कातायामा सोमवार को मध्य एशियाई देश उज्बेकिस्तान में एडीबी की मंडल बैठक में शामिल हुई। इस क्षेत्र में इस बात को लेकर चिंता है कि ये संकट ऊर्जा, खाद्य सुरक्षा और अर्थव्यवस्थाओं को किस प्रकार प्रभावित करेगा। कातायामा ने कहा कि वैश्विक अनिश्चितता पूरे एशिया प्रशांत क्षेत्र के लिए एक गंभीर मुद्दा है। उन्होंने कहा कि जापान एडीबी के साथ मिलकर छोटी और मझौली कंपनियों को ईंधन की कमी से निपटने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करेगा और ऊर्जा परिवर्तन को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न देशों को निवेश और ऋण भी उपलब्ध करवाएगा। बैठक के बाद कातायामा ने कहा कि आपूर्ति श्रृंखलाएं एशिया तक फैली हुई हैं, इसलिए इस क्षेत्र की मदद करना जापान के लिए काफी फायदेमंद है। जापान के आत्मरक्षा बल यानी JSDF के कर्मियों ने फिलीपींस अमेरिका सैन्य अभ्यास के तहत गोलाबारी अभ्यास किया है। बालिकातान अभ्यास फिलीपींस में 20 अप्रैल को शुरू हुआ था। JSDF ने इसमें भाग लेने के लिए लगभग 1,400 कर्मी भेजे हैं। सोमवार के अभ्यास में उत्तरी फिलीपींस के इलोकोस नॉर्ते प्रांत के तट पर आक्रमण को रोकने का प्रशिक्षण भी किया गया। यह क्षेत्र दक्षिण चीन सागर की ओर मुख किए हुए है। अमरीकी सैनिकों ने हाईमार्स नामक प्रणालियों से समुद्र में रॉकेट दागे। उन्होंने ड्रोन विमानों को भेदने के लिए सतह से हवा में मार करने में सक्षम पोर्टेबल मिसाइल प्रणाली का भी उपयोग किया। जापान के थल आत्मरक्षा बल की उभयचर त्वरित तैनाती ब्रिगेड के लगभग 40 कर्मियों ने रिकॉयललेस बंदूकों से गोलीबारी की। इस ब्रिगेड का मुख्यालय नागासाकी में है। जापान और फिलीपींस के बीच पिछले साल लागू हुए सुरक्षा सहयोग समझौते के बाद ये अभ्यास किया जा रहा है। ये समझौता संयुक्त अभ्यास की प्रक्रियाओं को सरल बनाता है। जापान सरकार के आंकड़ों के अनुसार देश में बाल जनसंख्या घटकर 1,33,00,000 हो गई है। लगातार 45वें वर्ष इस आंकड़े में गिरावट दर्ज की गई है। आंतरिक मामलों के मंत्रालय का अनुमान है कि 1 अप्रैल तक 14 वर्ष या इससे कम आयु के बच्चों की संख्या 1,32,90,000 थी, जो एक वर्ष पहले की तुलना में 3,50,000 कम

0: है। कुल बाल जनसंख्या में लड़कों की संख्या 68,10,000 है, जबकि लड़कियों की संख्या 64,80,000 है। आबादी को आयु वर्ग के अनुसार विभाजित करने पर आयु वर्ग कम होने पर संख्या कम होती जाती है। उदाहरण के लिए 12 से 14 वर्ष की आयु के 30,90,000 बच्चे हैं, लेकिन 0 से 2 वर्ष के आयु वर्ग के केवल 21,30,000 बच्चे हैं। देश की कुल जनसंख्या में बच्चे अब 10.8% हैं, जो पिछले वर्ष की तुलना में 0.3 अंक कम है। ये प्रतिशत लगातार 52 साल से घट रहा है। संयुक्त राष्ट्र विश्व जनसंख्या पूर्वानुमान के अनुसार 1 जुलाई 2025 तक 4 करोड़ से अधिक की आबादी वाले देशों में ये आंकड़ा दक्षिण कोरिया के 10.2% के बाद दूसरा सबसे कम है।
1: इसके साथ ही NHK वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा से समाचारों का ये अंक समाप्त होता है।
2: ये है NHK वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा। भारत में हमारे प्रसारण का आनंद आप ले सकते हैं रात 9 बजे से शॉर्टवेव 11655 किलोहर्ट्ज पर। हमारा सजीव प्रसारण nhk.jp/hindi पर भी सुना जा सकता है। सुनते रहें NHK वर्ल्ड जापान।

0: एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा के भाषा शिक्षण कार्यक्रम बोलचाल की जापानी में आपका स्वागत है। मैं हूं चिन्मय दीक्षित।
1: और मैं हूं सुमिता भट्टाचार्य। तो आइए मजे से सीखें जापानी भाषा।
0: आज 10वें पाठ में सीखेंगे दाम पूछना।
1: वियतनाम से जापान आई विदेशी छात्रा ताम हारूसान हाउस में रहती है। वो अपनी सहेली आयाका के साथ विद्युत उपकरणों की दुकान में आई है। ताम बाल सुखाने का ड्रायर खरीदना चाहती है।
0: तो आइए सुनते हैं 10वें पाठ की बातचीत।
2: すごいでしょ。これはサラサラヘア。これはツヤが出るタイプ。へえ、いくらですか？セールって書いてある。聞いてみよう。すみません。このドライヤーはいくらですか？9900円です。え、高すぎます。
1: अब इस बातचीत को फिर से हर वाक्य के अर्थ के साथ सुनते हैं।
0: दुकान में तरह तरह के ड्रायर देखकर ताम सोच में पड़ गई। उसने कहा,
1: बहुत सारे हैं।
0: तब आयाका बोली,
2: सुगोई देशो,
1: बढ़िया है ना?
0: फिर आयाका ताम को तरह तरह के ड्रायर दिखाने लगी।
2: कोरे वा सरा सरा है या।
1: ये बालों को रेशमी बनाता है।
2: कोरे वा त्सुयांगा देरु टाइप।
1: इससे बालों में चमक आती है।
0: उसके बाद ताम ने पूछा,
2: इकुरा देस्का?
1: अच्छा, कितने का है?
0: आयाका ने ड्रायर पर लगी पर्ची देखी, लेकिन उस पर लाल रंग से केवल सेल लिखा हुआ था। उसने कहा,
2: सेल उत्ते काइते आरु।
1: सेल लिखा हुआ है।
2: कीते मियो?
1: पूछते हैं।
0: ताम ने दुकानदार को आवाज लगाई,
2: सुमिमासेन,
1: माफ कीजिए,
2: कोनो ड्रायर वा इकुरा देस्का?
1: ये ड्रायर कितने का है?
0: दुकानदार ने बताया,
3: 9900円 です।
0: 9900円 का।
1: ये सुनकर ताम हैरान होकर बोली,
2: え、高すぎます।
1: ओह, बहुत महंगा है।
0: ताम ने ड्रायर के दाम तो पूछ लिए, लेकिन वो उसके लिए बहुत महंगा था।
1: आज का मुख्य वाक्य है,
2: このドライヤーはいくらですか?
1: यानी ये ड्रायर कितने का है? ये वाक्य याद करके आप खरीदारी करते समय दाम पूछ सकेंगे।
0: इस वाक्य में
4: कोनो
0: का अर्थ है ये,
4: ड्रायर
0: का मतलब है बाल सुखाने का ड्रायर,
4: वा
0: वाक्य का विषय बताने वाला कारक है, और
4: इकुरा
0: का अर्थ है कितने का।
1: आज के पाठ में ध्यान देने वाली बात ये है कि किसी चीज का दाम पूछते समय जापानी में कहते हैं
4: इकुरा देस्का,
1: यानी कितने का है। तो आपको बस उस चीज की तरफ इशारा करना है जिसका नाम आप पूछना चाहते हैं और कहना है इकुरा देस्का।
0: इसके अलावा आप पिछले पाठों में सीखे संकेतवाचक सर्वनामों का भी उपयोग कर सकते हैं। आपको याद होगा संकेतवाचक सर्वनाम है
4: कोरे, सोरे, अरे,
0: यानी ये, वो या वो दूर। जैसे आपका वाक्य हो सकता है
4: कोरे वा इकुरा देस्का,
0: यानी ये कितने का है।
1: अगर आपको उस चीज का नाम पता हो तो आप
4: कोरे, सोरे, अरे
1: की जगह कह सकते हैं
4: कोनो, सोनो, अनो
1: और उसके बाद उस चीज का नाम। जैसे ड्रायर का दाम पूछना हो तो वाक्य बनेगा कोनो दोराया वा इकुरा देस्का, यानी ये ड्रायर कितने का है।
0: तो अब आप भी उच्चारण का अभ्यास कर लीजिए, सुनिए और दोहराइए।
4: このドライヤーはいくらですか?
1: अब एक और छोटी सी बातचीत सुनते हैं जिसमें ग्राहक दुकानदार से किसी चीज का दाम पूछ रहा है।
5: すみません、この炊飯器はいくらですか?
3: 8700円です。
0: और अब समझ लेते हैं इसका अर्थ। पहले महिला ने पूछा,
5: सुमिमासेन,
1: माफ कीजिए,
5: कोनो सुईहान की वा इकुरा देस्का?
1: ये राइस कुकर कितने का है?
0: इस वाक्य में
4: सुईहान की
0: का अर्थ है राइस कुकर।
1: जवाब में दुकानदार ने कहा,
3: 8700円です。
0: 8700円か。
6: 円
1: का मतलब है जापान की मुद्रा येन।
0: तो फिर से सुनिए और बोलने का अभ्यास कीजिए।
4: すみません。この炊飯器はいくらですか？
1: अब वाक्य बनाकर देखिए। मान लीजिए आप किसी दुकान में ऊंची शेल्फ पर रखे ईयरफोन का दाम पूछना चाहते हैं। चीज आपसे और दुकानदार से दूर रखी है, इसलिए उसके नाम से पहले लगाएंगे
4: अनो,
1: और ईयरफोन का जापानी उच्चारण है
4: इयाहोन।
1: तो वाक्य बनाने की कोशिश कीजिए।
2: すみません、あのイヤホンはいくらですか？
0: अब सीख लेते हैं कुछ संबंधित शब्द। आज की बातचीत में दुकानदार ने ड्रायर का दाम बताया। इससे पहले हम 10 तक की गिनती सीख चुके हैं, आज कुछ बड़ी संख्याएं सीखते हैं।
1: पहले दो अंकों की संख्याओं की बात करते हैं। 20 से लेकर 90 तक के 10 के गुणकों को जापानी भाषा में बोलने के लिए 2 से 9 तक की संख्याओं के साथ
4: जू
1: यानी 10 जोड़ते हैं।
0: अगर 20 कहना है तो उसके पहले बोलेंगे नी यानी 2 और उसके बाद जू यानी 10, तो बन जाएगा नी जू।
1: तो जापानी भाषा में 10 से लेकर 90 तक 10 के गुणक हैं
4: जू, नी जू, सान जू, योन जू, गो जू, रुक जू, नना जू, हच जू, क्यू जू।
0: अब बात करते हैं 3 अंकों की संख्याओं की। 100 को जापानी में कहते हैं
4: 100।
0: 100 के गुणक बनाने के लिए भी
4: 100
0: से पहले 2 से 9 की संख्याएं जोड़ी जाती हैं।
1: इसलिए जापानी में 200 बोलने के लिए नी के बाद 100 जोड़कर बनेगा नी 100।
0: लेकिन कुछ संख्याओं के साथ उच्चारण बदल जाता है, जैसे 300 है
4: 300,
0: 600 है
4: 600
0: और 800 है
4: 800।
1: अब 1000 की गिनती सीखते हैं। 1000 को कहते हैं
4: सेन,
1: और उसके गुणक बनाने के लिए भी सेन से पहले 2 से 9 तक के अंक लगाए जाते हैं।
0: यहाँ भी कुछ संख्याओं का उच्चारण बदलता है। 3000 को कहते हैं
4: सानजेंग
0: और 8000 को कहते हैं
4: हसेंग।
1: बड़ी संख्याएं बोलने के लिए बड़े अंक से छोटे अंक को क्रम में बोलते हैं, जैसे 1234 को जापानी भाषा में कहेंगे
4: 1234।
0: तो अब आज की बातचीत एक बार फिर सुन लेते हैं।
2: たくさんありますね。
5: すごいでしょ。
2: これはサラサラヘア。これはツヤが出るタイプ。へえ、いくらですか？
5: セールって書いてある。聞いてみよう。
2: すみません。このドライヤーはいくらですか？
3: 9900円です。
7: え、高すぎます。
8: ハルさんの知恵袋。
0: अब बारी है हारू जी की सलाह की। आज हम बताएंगे जापान के नोट और सिक्कों के बारे में।
1: जापान में 4 तरह के नोट हैं। 1000 येन, 2000 येन, 5000 येन और 10000 येन के।
0: जापान के लोग नए नोट पसंद करते हैं। शादी या अन्य खुशी के अवसरों पर उपहार में पैसे देते समय नए नोट देना उचित माना जाता है। उपहार में पैसे देने के लिए यहाँ खास लिफाफे मिलते हैं, लोग उनमें नए नोट डालकर भेंट करते हैं।
1: इसके अलावा जापान में 6 तरह के सिक्के हैं। 1 येन, 5 येन, 10 येन, 50 येन, 100 येन और 500 येन के। वेंडिंग मशीनों में 1 और 5 येन के सिक्के नहीं चलते, उनका इस्तेमाल दुकान से खरीदारी करते समय ही हो सकता है। दोस्तों, आशा है बोलचाल की जापानी का आज का पाठ आपको पसंद आया होगा।
0: अगले पाठ में ताम आसाकुसा जाएंगी। तब तक के लिए
1: सायोनारा।

ये एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी रेडियो सेवा है। ये प्रसारण शॉर्टवेव 11655 किलोहर्ट्ज पर दक्षिण पश्चिम एशिया क्षेत्र के लिए है। समय हुआ है यूटीसी अपराह्न 3:30 बजे यानी भारतीय समयानुसार रात 9 बजे। हमारी प्रसारण सूची और ताज़ा समाचारों के लिए देखें हमारी वेबसाइट nhk.jp/hindi।

टोक्यो से एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा में आपका स्वागत है। जापान के समयानुसार 5 मई मंगलवार रात 11:30 बजे गुरजिंदर सग्गू और वायला खवानो से सुने समाचार। जापान और ऑस्ट्रेलिया के नेताओं ने आर्थिक सुरक्षा सहयोग की रूपरेखा प्रस्तुत करता एक संयुक्त घोषणा पत्र जारी किया है। इन दिशा निर्देशों में ऊर्जा, अहम खनिजों, खाद्य पदार्थों और अन्य प्रमुख संसाधनों की आपूर्ति श्रृंखलाएं सुदृढ़ करने पर ध्यान दिया गया है। जापान की प्रधानमंत्री ताकायची सानाए ने सोमवार को ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री एंथनी अल्बानीस के साथ ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबेरा में वार्ता की। ताकायची ने वार्ता की शुरुआत में कहा कि अंतर्राष्ट्रीय माहौल जटिल और गंभीर होता जा रहा है। उन्होंने कहा कि इसी कारण से वे कई वर्षों से समान विचारधारा वाले देशों के बीच सहयोग के महत्व पर जोर देती आई हैं। नेताओं ने पश्चिम एशिया की मौजूदा स्थिति को ध्यान में रखते हुए स्थिर द्विपक्षीय ऊर्जा आपूर्ति सुनिश्चित करने के प्रयास आगे बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की। ताकायची और अल्बानीज इस बात पर सहमत हुए कि अल्बानीज की जापान यात्रा से पहले दोनों देशों के मंत्रीगण व्यापक सुरक्षा सहयोग को और बढ़ाने तथा संस्थागत रूप देने के ठोस तरीकों का पता लगाएंगे। दोनों नेता जापानी आत्मरक्षा बल और ऑस्ट्रेलियाई सेना के बीच सहयोग मजबूत करने के प्रयासों पर भी सहमत हुए। नेताओं ने पुष्टि की कि उनके देश साइबर के क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए सामरिक साझेदारी करेंगे। उन्होंने पश्चिम एशिया, चीन और उत्तर कोरिया सहित क्षेत्रीय मुद्दों पर भी विचार विमर्श किया। उन्होंने होर्मुज जलडमरू मध्य से निर्बाध व सुरक्षित नौवहन सुनिश्चित करने के महत्व की पुष्टि की और वे तनाव कम करने के लिए निकट संपर्क में रहने पर भी राजी हुए। जापान और इंडोनेशिया के रक्षा मंत्रियों ने रक्षा उपकरणों और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए एक कार्यकारी दल गठित करने पर सहमति व्यक्त की है। जापान ने विदेशों को रक्षा उपकरण देने पर लगे प्रतिबंधों में ढील दी है, जिसके बाद ये सहमति हुई है। जापान के रक्षा मंत्री कोइजुमी शिंजिरो और उनके इंडोनेशियाई समकक्ष शफरी शमसुद्दीन ने सोमवार को जकार्ता में मुलाकात की। शमसुद्दीन ने जापानी नीति में किए गए इस बदलाव का स्वागत किया। पिछले महीने जापान ने विदेशों को रक्षा उपकरण देने से संबंधित अपने 3 सिद्धांतों और उनके परिपालन दिशा निर्देशों में संशोधन किया था। विदेशों को रक्षा उपकरण हस्तांतरित करने के नियम बचाव और परिवहन जैसी 5

के तरीकों पर चर्चा को आगे बढ़ाने पर भी सहमति व्यक्त की। बाद में उन्होंने एक दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए जिसमें कहा गया है कि दोनों पक्ष समुद्री सुरक्षा, आपदा संबंधी राहत उपायों और रक्षा प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाएंगे।

0: ये समाचार एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा से प्रसारित किए जा रहे हैं।
1: जापान की वित्त मंत्री कातायामा सात्सुकी ने मौजूदा पश्चिम एशिया संकट के बीच आर्थिक कठिनाइयों का सामना कर रहे विकासशील देशों की सहायता के लिए एशियाई विकास बैंक यानी एडीबी के साथ सहयोग करने का संकल्प लिया है। कातायामा सोमवार को मध्य एशियाई देश उज्बेकिस्तान में एडीबी की मंडल बैठक में शामिल हुई। इस क्षेत्र में इस बात को लेकर चिंता है कि ये संकट ऊर्जा, खाद्य सुरक्षा और अर्थव्यवस्थाओं को किस प्रकार प्रभावित करेगा। कातायामा ने कहा कि वैश्विक अनिश्चितता पूरे एशिया प्रशांत क्षेत्र के लिए एक गंभीर मुद्दा है। उन्होंने कहा कि जापान एडीबी के साथ मिलकर छोटी और मझौली कंपनियों को ईंधन की कमी से निपटने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करेगा और ऊर्जा परिवर्तन को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न देशों को निवेश और ऋण भी उपलब्ध करवाएगा। बैठक के बाद कातायामा ने कहा कि आपूर्ति श्रृंखलाएं एशिया तक फैली हुई हैं, इसलिए इस क्षेत्र की मदद करना जापान के लिए काफी फायदेमंद है। जापान के आत्मरक्षा बल यानी JSDF के कर्मियों ने फिलीपींस अमेरिका सैन्य अभ्यास के तहत गोलाबारी अभ्यास किया है। बालिकातान अभ्यास फिलीपींस में 20 अप्रैल को शुरू हुआ था। JSDF ने इसमें भाग लेने के लिए लगभग 1,400 कर्मी भेजे हैं। सोमवार के अभ्यास में उत्तरी फिलीपींस के इलोकोस नॉर्ते प्रांत के तट पर आक्रमण को रोकने का प्रशिक्षण भी किया गया। यह क्षेत्र दक्षिण चीन सागर की ओर मुख किए हुए है। अमरीकी सैनिकों ने हाईमार्स नामक प्रणालियों से समुद्र में रॉकेट दागे। उन्होंने ड्रोन विमानों को भेदने के लिए सतह से हवा में मार करने में सक्षम पोर्टेबल मिसाइल प्रणाली का भी उपयोग किया। जापान के थल आत्मरक्षा बल की उभयचर त्वरित तैनाती ब्रिगेड के लगभग 40 कर्मियों ने रिकॉयललेस बंदूकों से गोलीबारी की। इस ब्रिगेड का मुख्यालय नागासाकी में है। जापान और फिलीपींस के बीच पिछले साल लागू हुए सुरक्षा सहयोग समझौते के बाद ये अभ्यास किया जा रहा है। ये समझौता संयुक्त अभ्यास की प्रक्रियाओं को सरल बनाता है। जापान सरकार के आंकड़ों के अनुसार देश में बाल जनसंख्या घटकर 1,33,00,000 हो गई है। लगातार 45वें वर्ष इस आंकड़े में गिरावट दर्ज की गई है। आंतरिक मामलों के मंत्रालय का अनुमान है कि 1 अप्रैल तक 14 वर्ष या इससे कम आयु के बच्चों की संख्या 1,32,90,000 थी, जो एक वर्ष पहले की तुलना में 3,50,000 कम है। कुल बाल जनसंख्या में लड़कों की संख्या 68,10,000 है, जबकि लड़कियों की संख्या 64,80,000 है। आबादी को आयु वर्ग के अनुसार विभाजित करने पर आयु वर्ग कम होने पर संख्या कम होती जाती है। उदाहरण के लिए 12 से 14 वर्ष की आयु के 30,90,000 बच्चे हैं, लेकिन 0 से 2 वर्ष के आयु वर्ग के केवल 21,30,000 बच्चे हैं। देश की कुल जनसंख्या में बच्चे अब 10.8% है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 0.3 अंक कम है। ये प्रतिशत लगातार 52 साल से घट रहा है। संयुक्त राष्ट्र विश्व जनसंख्या पूर्वानुमान के अनुसार 1 जुलाई 2025 तक 4 करोड़ से अधिक की आबादी वाले देशों में ये आंकड़ा दक्षिण कोरिया के 10.2% के बाद दूसरा सबसे कम है।
0: इसके साथ ही एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा से समाचारों का ये अंक समाप्त होता है।
2: ये है एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा। भारत में हमारे प्रसारण का आनंद आप ले सकते हैं रात 9 बजे से शॉर्टवेव 11,655 किलोहर्ट्ज पर। हमारा सजीव प्रसारण nhk.jp/hindi पर भी सुना जा सकता है। सुनते रहें NHK वर्ल्ड जापान।

0: एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा के भाषा शिक्षण कार्यक्रम बोलचाल की जापानी में आपका स्वागत है। मैं हूं चिन्मय दीक्षित।
1: और मैं हूं सुमिता भट्टाचार्य। तो आइए मजे से सीखें जापानी भाषा।
0: आज 10वें पाठ में सीखेंगे दाम पूछना।
1: वियतनाम से जापान आई विदेशी छात्रा ताम हारूसान हाउस में रहती है। वो अपनी सहेली आयाका के साथ विद्युत उपकरणों की दुकान में आई है। ताम बाल सुखाने का ड्रायर खरीदना चाहती है।
0: तो आइए सुनते हैं 10वें पाठ की बातचीत।
2: すごいでしょ。これはサラサラヘア。これはツヤが出るタイプ。へえ、いくらですか？セールって書いてある。聞いてみよう。すみません。このドライヤーはいくらですか？9900円です。え、高すぎます。
1: अब इस बातचीत को फिर से हर वाक्य के अर्थ के साथ सुनते हैं।
0: दुकान में तरह तरह के ड्रायर देखकर ताम सोच में पड़ गई। उसने कहा,
1: बहुत सारे हैं।
0: तब आयाका बोली,
2: सुगोई देशो,
1: बढ़िया है ना।
0: फिर आयाका ताम को तरह तरह के ड्रायर दिखाने लगी।
2: कोरे वा सरा सरा है या।
1: ये बालों को रेशमी बनाता है।
2: कोरे वा त्सुयांगा देरु टाइप।
1: इससे बालों में चमक आती है।
0: उसके बाद ताम ने पूछा,
2: इकुरा देस्का?
1: अच्छा, कितने का है?
0: आयाका ने ड्रायर पर लगी पर्ची देखी, लेकिन उस पर लाल रंग से केवल सेल लिखा हुआ था। उसने कहा,
2: सेल उत्ते कहते आर।
1: सेल लिखा हुआ है।
2: कीते मिया?
1: पूछते हैं।
0: ताम ने दुकानदार को आवाज लगाई,
2: सुमिमासेन,
1: माफ कीजिए,
2: कोनो ड्रायर वा इकुरा देस्का?
1: ये ड्रायर कितने का है?
0: दुकानदार ने बताया,
3: 9900円です।
0: 9900円का।
1: ये सुनकर ताम हैरान होकर बोली,
2: तकसुगीमासु।
1: ओह, बहुत महंगा है।
0: ताम ने ड्रायर के दाम तो पूछ लिए, लेकिन वो उसके लिए बहुत महंगा था।
1: आज का मुख्य वाक्य है,
2: कोनो ड्रायर वा इकुरा देस्का?
1: यानी ये ड्रायर कितने का है? ये वाक्य याद करके आप खरीदारी करते समय दाम पूछ सकेंगे।
0: इस वाक्य में
4: कोनो
0: का अर्थ है ये,
4: ड्रायर
0: का मतलब है बाल सुखाने का ड्रायर,
4: वा
0: वाक्य का विषय बताने वाला कारक है, और
4: इकुरा
0: का अर्थ है कितने का।
1: आज के पाठ में ध्यान देने वाली बात ये है कि किसी चीज का दाम पूछते समय जापानी में कहते हैं
4: इकुरा देस्का,
1: यानी कितने का है। तो आपको बस उस चीज की तरफ इशारा करना है जिसका नाम आप पूछना चाहते हैं और कहना है इकुरा देस्का।
0: इसके अलावा आप पिछले पाठों में सीखे संकेतवाचक सर्वनामों का भी उपयोग कर सकते हैं। आपको याद होगा संकेतवाचक सर्वनाम है
4: कोरे, सोरे, अरे,
0: यानी ये, वो या वो दूर। जैसे आपका वाक्य हो सकता है
4: कोरे वा इकुरा देस्का,
0: यानी ये कितने का है।
1: अगर आपको उस चीज का नाम पता हो तो आप
4: कोरे, सोरे, अरे
1: की जगह कह सकते हैं
4: कोनो, सोनो, अनो
1: और उसके बाद उस चीज का नाम। जैसे ड्रायर का दाम पूछना हो तो वाक्य बनेगा कोनो दोराया वा इकुरा देस्का, यानी ये ड्रायर कितने का है।
0: तो अब आप भी उच्चारण का अभ्यास कर लीजिए। सुनिए और दोहराइए,
4: このドライヤーはいくらですか？
1: अब एक और छोटी सी बातचीत सुनते हैं जिसमें ग्राहक दुकानदार से किसी चीज का दाम पूछ रहा है।
5: すみません、この炊飯器はいくらですか？
3: 8700円です。
0: और अब समझ लेते हैं इसका अर्थ। पहले महिला ने पूछा,
5: सुमिमासेन,
1: माफ कीजिए,
5: कोनो सुईहान की वा इकुरा देस्का?
1: ये राइस कुकर कितने का है।
0: इस वाक्य में
4: सुईहान की
0: का अर्थ है राइस कुकर।
1: जवाब में दुकानदार ने कहा,
3: 8700円です。
0: 8700円か。
1: 円का मतलब है जापान की मुद्रा येन।
0: तो फिर से सुनिए और बोलने का अभ्यास कीजिए।
4: すみません。この炊飯器はいくらですか？
1: अब वाक्य बनाकर देखिए। मान लीजिए आप किसी दुकान में ऊंची शेल्फ पर रखे ईयरफोन का दाम पूछना चाहते हैं। चीज आपसे और दुकानदार से दूर रखी है, इसलिए उसके नाम से पहले लगाएंगे
4: अनो,
1: और ईयरफोन का जापानी उच्चारण है
4: इयाहोन।
1: तो वाक्य बनाने की कोशिश कीजिए।
2: すみません、あのイヤホンはいくらですか？
0: अब सीख लेते हैं कुछ संबंधित शब्द। आज की बातचीत में दुकानदार ने ड्रायर का दाम बताया। इससे पहले हम 10 तक की गिनती सीख चुके हैं, आज कुछ बड़ी संख्याएं सीखते हैं।
1: पहले दो अंकों की संख्याओं की बात करते हैं। 20 से लेकर 90 तक के 10 के गुणकों को जापानी भाषा में बोलने के लिए 2 से 9 तक की संख्याओं के साथ
4: जू
1: यानी 10 जोड़ते हैं।
0: अगर 20 कहना है तो उसके पहले बोलेंगे नी यानी 2 और उसके बाद जू यानी 10, तो बन जाएगा नी जू।
1: तो जापानी भाषा में 10 से लेकर 90 तक 10 के गुणक हैं
4: जू, निजू, सांजू, योंजू, गोजू, रुकुजू, ननाजू, हाचीजू, क्यूजू।
0: अब बात करते हैं 3 अंकों की संख्याओं की। 100 को जापानी में कहते हैं
4: 100।
0: 100 के गुणक बनाने के लिए भी
4: 100
0: से पहले 2 से 9 की संख्याएं जोड़ी जाती हैं।
1: इसलिए जापानी में 200 बोलने के लिए नी के बाद 100 जोड़कर बनेगा नी 100।
0: लेकिन कुछ संख्याओं के साथ उच्चारण बदल जाता है, जैसे 300 है
4: 300,
0: 600 है
4: 600
0: और 800 है
4: 800।
1: अब 1000 की गिनती सीखते हैं। 1000 को कहते हैं
4: सेन,
1: और उसके गुणक बनाने के लिए भी सेन से पहले 2 से 9 तक के अंक लगाए जाते हैं।
0: यहाँ भी कुछ संख्याओं का उच्चारण बदलता है। 3000 को कहते हैं
4: सानजेंग
0: और 8000 को कहते हैं
4: हसेंग।
1: बड़ी संख्याएं बोलने के लिए बड़े अंक से छोटे अंक को क्रम में बोलते हैं, जैसे 1234 को जापानी भाषा में कहेंगे
4: सेन निहाकु सांजु योंग।
0: तो अब आज की बातचीत एक बार फिर सुन लेते हैं।
2: すごいでしょ。これはサラサラヘア。これはツヤが出るタイプ。へえ、いくらですか？セールって書いてある。聞いてみよう。すみません。このドライヤーはいくらですか？
3: 9900円です。
2: え、高すぎます。
0: अब बारी है हारू जी की सलाह की। आज हम बताएंगे जापान के नोट और सिक्कों के बारे में।
1: जापान में 4 तरह के नोट हैं, 1000 येन, 2000 येन, 5000 येन और 10000 येन के।
0: जापान के लोग नए नोट पसंद करते हैं। शादी या अन्य खुशी के अवसरों पर उपहार में पैसे देते समय नए नोट देना उचित माना जाता है। उपहार में पैसे देने के लिए यहाँ खास लिफाफे मिलते हैं, लोग उनमें नए नोट डालकर भेंट करते हैं।
1: इसके अलावा जापान में 6 तरह के सिक्के हैं, 1 येन, 5 येन, 10 येन, 50 येन, 100 येन और 500 येन के। वेंडिंग मशीनों में 1 और 5 येन के सिक्के नहीं चलते, उनका इस्तेमाल दुकान से खरीदारी करते समय ही हो सकता है। दोस्तों, आशा है बोलचाल की जापानी का आज का पाठ आपको पसंद आया होगा।
0: अगले पाठ में ताम असाकुसा जाएंगी, तब तक के लिए
1: सायोनारा।